0: ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖକୁ ଡାକି ଆଣିଥାଏ। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା, ସମୟ ସକାଳ 6ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସାରଣ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूहों को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहा 3 दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाला भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने संबंध में अधिसूचना जारी की। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
2: कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उसमें अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली सरकार आज से एक

योजना आय सफलतार सहित 2 बछर पूरा करिछि। गला 2 बछर भितरे 5टा किस्ती थी 1,03,00,000 नु अधिक महिलांकर बैंक खाता के डीबीटी जरिए 25,800 कोटी टंका हस्तांतर करा जायछि। आयसानु महिला सशक्तिकरण आ आत्मसम्मान रो संकल्प दिवस भाबे पालन करा जिवा बोली उपमुख्यमंत्री श्रीमती परिडा कहिछन। पोषण अभियान जरिए ओडिसा के 100% कुपोषण मुक्त करिकिरी गुटे सुपोषित आ विकसित ओडिसा गठन लागि विभाग संकल्पबद्ध बोली से कहिछन। भुवनेश्वर विमान बंदर तरफ आयस्थानु आयबा 10 तारीख तक यात्री सेवा अभियान मूल हेबा। ये अभियान अवसर विमान बंदर तरफ भिन्न भिन्न पदक्षेप नियाजिबार के योजना करा जायछि। स्वच्छता यात्री सुरक्षा पहला करी विमान थी यात्रा करथुवा लोकु स्वतंत्र सहाज बागिर भिन्न भिन्न पदक्षेप नियाजिबा बोली विमान बंदर निर्देशक प्रसन्न प्रधान सूचना देइछन्। भारत विमान सेवा प्राधिकरण तरफ झारसुगुड़ा वीर सुरेन्द्र साय विमान बंदर नबिल आयस्थानु यात्री सेवा अभियान पालन करा जिबा। ई अवसर विमान बंदर रो भिन्न भिन्न सेवा अव्यवस्थार समीक्षा करा जिबा बोली विमान बंदर कर्तृपक्षक तरफ सूचना मिली छे। प्रधानमंत्री जन्मदिन अवसर सेवा ही समर्पण सेवा ही परिचय दिवस पालन अवसर नुआपड़ा जिला खड़ियाल 106 युवक भुवनेश्वर जाइछन। भुवनेश्वर प्रदर्शनी पड़ियाना हेबार के थिबा विशाल रक्तदान शिविर थी सेमाने सामिल होकर रक्तदान करबे। आज हेउछे देवशिल्पी विश्वकर्मांकर पूजा। आज देशर सबु कारीगरी आउ इंजीनियरिंग संस्था शिल्पानुष्ठान आउ कलकारखाना मानके विश्वकर्मांकर पूजा करा जाउछे। घर मानके आज गाड़ी मोटर आउ व्यवहार होउथबा छोट बड़ मशीन मानकु पूजा करा जिबा। पश्चिम ओडिसार शिल्प शहर हीराकुद झारसुगुड़ा ब्रजराजनगर राउरकेला बेलपहाड़ राजगांगपुर लांजीगढ़ आर अलगा जगह मानके विश्वकर्मा पूजार लागि जबर आयोजन करा जाइछे। बुध मासर उज्जवल पखर षष्ठी तिथि अवसर आज पुरी श्रीमंदिर महाप्रभु मान बिंबासुर बद्ध प्रस्ताव नीति करा संध्या धूप उतरु इ नीति करा जिबा। मार्केंडेश्वर साही तरफु इ नीति करा जायसी। संध्या धूप उतरु महाप्रभुंकर चलंती प्रतिमा मदन मोहन रत्न सिंहासन के विजय करबार परे जगन्नाथंकर बाड़नु आज्ञामाल पाइकिरी नाटमंडपन विजय कला उतरु इ नीति करा जिबा। इ समयति नाटमंडपन महाप्रभु मानकु शीतल भोग आ बंदापन नीति भिल करा जिबा। देवगढ़ जिलापालंकर सम्मेलनी कक्षन जिला विकास समन्वय और मॉनिटरिंग कमिटी दिशा बैठक गलाकाल होइछे। संबलपुर सांसद धर्मेन्द्र प्रधान अध्यक्षता होता बैठक ती जिलार विकास प्रक्रिया के तुर्ति करबार उपरे जोर दिया जाइछे। जिलान चालुथुबा राज्य और केन्द्र सरकार का भिन्न भिन्न योजना बाबते श्री प्रधान आलोचना करथिले। बैठक ती विधायक रोमांच रंजन विश्वाळंकर सहित भिन्न भिन्न विभाग अधिकारी माने जोग देथिले। पाणीपाग उत्तर थाईलैंड उपरे गुटे घूर्णिबलय हेछि। एटा आबा शनिवार तक उत्तर आंडामान सागर न लघुचाप थी बदलिबा बोली पाणीपाग विभाग तरफ आकलन करा जाइछि। आबा 3-4 दिन भितरे एटा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिक्के जाइकिरी दक्षिण ओडिसा आ उत्तर आंध्रप्रदेश न समुद्र खणी आड़के जिबा। एतार प्रभाव थी दक्षिण ओडिसा न जबर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार राज्य फेर वर्षार परिमाण बढ़वा। आबा 24 घंटा भितरे बिजली घड़घड़ी सहित वर्षा हेबा बोली 20 जिला के सतर्क सूचना जारी करा जाय छी। एचडी आंचलिक खबर इन शेषला। आरबलर आंचलिक खबर सुनि पारबे राती 7:02 थी। जुहार।

0: ଆକାଶବାଣୀର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଆକାଶବାଣୀ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे

0: से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। कहा, पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी समझौते में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। नया रेत से सिलिकॉन से सिस्टम तक मूल्य श्रृंखला अनुभव सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में इस पूरी यात्रा को प्रस्तुत करेगा। सेमिकॉन इंडिया 2026 में 600 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और लगभग 50,000 आगंतुकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। इनमें 52 देशों से प्रतिनिधि, 400 से अधिक अधिकारी और 150 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्षों के उपलक्ष्य पर उनके जन्मस्थान वडनगर में विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ऐतिहासिक शर्मिष्ठा तालाब पर आयोजित महाआरती में भाग लेंगे, जहां से पवित्र जल का कलश वाराणसी जाने वाले बाइकर्स को सौंपा जाएगा। इसके बाद दोनों नेता हाटकेश्वर मंदिर तक पदयात्रा पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पटेल वडनगर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत श्रमदान भी करेंगे। अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बाइक यात्रा के शुभारंभ से पहले काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री के

0: जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े चार प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जनसुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज कर्तव्य पथ पर 1,00,000 से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। जन सेवा से देश सेवा के मार्गदर्शक सिद्धांत से प्रेरित ये कार्यक्रम जन भागीदारी और सेवा की भावना का एक मजबूत संदेश देगा। इस बीच त्यागराज स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुर में जीडी करना लोड पर खाटू श्याम तिल्ली धाम में 108 कुंडीय यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के लिए एक नमो श्रमिक सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा, जो एक ही छत के नीचे पंजीकरण, दस्तावेज, सत्यापन और कल्याण योजनाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से इस सोच को जमीन पर उतारने के एक उदाहरण की जानकारी दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजनाओं के माध्यम से भारत में 20,41,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है और 14,15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
2: वर्ष 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में बदल दिया है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वही मोबाइल फोन निर्यात में 171 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे भारत एक शुद्ध आयातकर्ता से एक शुद्ध निर्यातकर्ता बन गया है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बताया।
3: सारण और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए सारण का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। सारण में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी।
2: आकाशवाणी से बात करते हुए राजकोट चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष पार्थ गणात्रा ने बताया कि मेक इन इंडिया योजना से राजकोट के एमएसएमई क्षेत्र को बड़ा लाभ हुआ है।
4: हाल राजकोट एमएसएमई उद्योग काफी सुवर्ण युग से पसार हो रहा है, उसमें कई वजह से उसको प्रोत्साहन मिला है। खास करके सरकार का जो हाल ही का निर्णय है मेक इन इंडिया, उसकी वजह से रेलवे और डिफेंस में भी राजकोट के काफी स्पेयर पार्ट्स जाने शुरू हो चुके हैं।
2: आज गुजरात मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख विकास इंजनों में से एक बना है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक उज्ज्वल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। इनमें स्वच्छता वाले चिन्हित स्थानों और सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प, स्वच्छ पाठशाला,

0: स्वच्छता के लिए युवा, सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर स्वच्छता के लिए जनभागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल हैं। हैदराबाद रियासत ने 17 सितंबर 1948 को आज ही के दिन भारतीय संघ में विलय किया था। इसकी स्मृति में आज हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार वर्ष 2022 से आधिकारिक रूप से हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह आयोजित कर रही है। मुख्य कार्यक्रम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए 2023 के बाद पहली बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। दर में 1/4% की बढ़ोतरी के बाद फेडरल रिजर्व की प्रमुख दर लगभग 3.9% हो गई है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का नाम दक्षिण कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है। विधेयक के समर्थन में 262 और विरोध में 159 सांसदों ने मतदान किया। विधेयक को पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में भी आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत पहले 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जया। प्रधानमंत्री के जन्मतिथि पर आज से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान। 1.25 लाख दियों से जगमग होगा कर्तव्य पथ। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ शीर्षक दिया है। राजस्थान पत्रिका ने विशेष कॉलम में लिखा है, मोदी एट 76, संघर्ष से शिखर तक का सफर। दैनिक जागरण के संपादकीय में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा है, मोदी के शासनकाल की सबसे स्थायी उपलब्धि भारतीय समाज की मुख्य धारा का विस्तार है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रतिमाह करने के समाचार को आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने खुशखबरी शीर्षक से लिखा है, कैबिनेट में लिया गया फैसला, पेंशन का दायरा बढ़ेगा। 2013 झीरम घाटी हमला, 10 दोषियों को सजाए मौत, पंजाब केसरी के शब्द हैं। पत्र लिखता है, हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 की मौत हुई थी। तृणमूल के 10 बागी विधायकों को अयोग्यता याचिका पर नोटिस जारी, हिंदुस्तान की खबर है। हिंदुस्तान अपने संपादकीय पन्ने पर भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक समापन पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, ब्रिक्स से भारत को मिले अनेक लाभ। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि सामरिक दृष्टि से भारत का महत्व बढ़ा है। भारत आज न केवल ब्रिक्स बल्कि G20, G7, क्वाड, SCO जैसे तमाम वैश्विक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जनसत्ता ने देश व्यापार पन्ने पर लिखा है, न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी दी। पत्र लिखता है, इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड भारत के 100% निर्यात पर शुल्क मुफ्त पहुंच देगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: ଏଥର ଶିଳ୍ପୀ ହେଲେ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ଏବଂ କିଶୋର କୁମାର। ସାହିରଙ୍କ ଗୀତ ରଚନାକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ଖୟାମ। କଥାଚିତ୍ର କଭି କଭି।

0: ଶେଷ ହେଲା ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା। ସମୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସାରଣ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स

0: क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाली राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके

0: को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाली राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली सरकार भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जनसुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री के उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने सुशासन के नए मानदंड स्थापित किए और समावेशी विकास को गति दी। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक उज्ज्वल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर अधिक भीड़ वाले पर्यटन स्थलों और पर्यटक केंद्रित समुद्र तटों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया। ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए वित्तीय संसाधनों की अधिक आवश्यकता है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तराखंड में आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं दिल्ली में भी आज आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi in a short while. Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The 3-day conference and exhibition being held from today is being organized on the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policymakers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. Bharatiya Janata Party will launch a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan beginning today. The initiative is designed to commemorate Prime Minister Narendra Modi's birthday today.

0: मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।
1: हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना गया है। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन, यही आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत कई दशकों से सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करना चाहता था, लेकिन ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
2: सेमिकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और 5वां स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। 6ठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
0: इस कार्यक्रम में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक

देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले इस सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में

0: देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी मिलने पर चलाए गए संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूची एच, H1 और X की औषधियों पर नियामक निगरानी को मजबूत करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इन औषधियों को खरीदने के लिए ग्राहकों को वैध पर्चे की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित संशोधन इन औषधियों की अनधिकृत पहुंच और बिक्री से संबंधित खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated Semicon India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, on one side, India's economy is growing, and on the other side, global trust in India is also growing. He said, despite the challenging global environment, India recorded a growth rate of 7.8%. Prime Minister said, at the same time, Japan's credit rating agency also upgraded India's sovereign rating. Mr. Modi said every citizen of the country is working with a commitment to build a developed India. The Prime Minister said India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and it is opening new opportunities for innovation, investment and growth.
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने transmission network को भी expand किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: ऑन द ओकेजन यूनियन मिनिस्टर of Electronics and IT, Ashwini Vaishnav said, India had wanted to establish a semiconductor industry for several decades, but it was possible only under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. He said the foundation has now been laid and the next step is to build the industry through Semicon 2.0. The BJP's month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan has begun from today to mark the completion of 25 years of Prime Minister Narendra Modi's public life and service. As part of the Seva Sankalp Abhiyan, which will continue till the 17th of next month, the first day of the campaign is being observed as Seva Divas, under which blood donation camps have been organised across the country. Talking to media on the occasion, BJP Chief Nitin Naveen said party workers across the country are participating in these blood donation camps. Mr. Naveen said under the leadership of Prime Minister Modi, India is rapidly moving on the path of development to achieve the goal of Viksit Bharat by 2047. Securities and Exchange Board of India Chairman Tuhinkanta Pandey has said that greater public awareness about the risks involved in derivatives trading is needed as many retail investors continue to suffer losses even after 3 to 4 years of trading in the futures and options segment. Addressing the NABFID Annual Infrastructure Conclave 2026, Mr. Pandey highlighted the need for investors to understand whether they are prepared to participate in the derivatives market. Mr. Pandey said the securities market can play an important role in meeting

0: International series against Afghanistan at the Arun Jaitley Stadium in Delhi today. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. At the stock markets, the Sensex was trading nearly flat while the Nifty was trading moderately higher during the afternoon session today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates SemiCon India 2026 in New Delhi, says India's semiconductor ecosystem expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth. Union Minister Ashwini Vaishnav says government has set a target to support 200 startups and companies to design chips in India across spectrum of semiconductor requirements. BJP's month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan begins today to mark Prime Minister Narendra Modi's 25 years of public life and service. PM Vishwakarma scheme completes 3 years today. India slams Pakistan for providing permissive environment for terrorists responsible for September 11 attacks in the United States. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया कहा भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे भारत ने अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को समर्थन देने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और क्रिकेट में भारत आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मैच खेलेगा अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग निवेश नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है वहीं दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है
2: दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है साथियों इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है उन्होंने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है साथियों भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है
2: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है टैप आउट ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्मित चिप अब देश के भीतर और दुनिया भर में उपलब्ध हैं। श्री मोदी ने बताया कि

0: तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण में के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
1: सेमिकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और पांचवा स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। छठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के उद्देश्य से 200 स्टार्टअप और कंपनियों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं, ये आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं अनुच्छेद 370 के संबंध में।
3: जम्मू कश्मीर में सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार जम्मू कश्मीर की संवैधानिक तारीख के अब तक के सबसे बड़े फैसले को दर्शाती है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में बड़ा बदलाव आया। सड़क रास्ते हो या रेल नेटवर्क, पर्यटन हो या सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में दिन ब दिन तरक्की और समृद्धि देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में हमने सीनियर राजनीतिक विश्लेषक हकीम रोहला गाजी से बात की तो उन्होंने कहा,
5: पिछले 7 सालों से जो नया कश्मीर बना है उस कश्मीर में सुख शांति खुशहाली समृद्धि हर एतबार से हम देखें, खा वो पीस हो, टूरिज्म हो, हमारी इकोनॉमी हो। कश्मीर में आए दिन वो हड़तालों का कल्चर वो खत्म हुआ, अब आए दिन हमारे यहाँ फेस्टिवल्स, दिन रात के हमारे टूर्नामेंट्स जो होते हैं, ये सब चीजें खुशहाल कश्मीर देखने को हमें आर्टिकल 370 के हटने से नजर में आया।
4: अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा केंद्रीय सरकार हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन जरूरी है कि यहाँ की आवाम भी इन अवसरों का पूरा फायदा उठाए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन और उनके 25 वर्ष की जनसेवा के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। गुजरात का वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह नगर है। श्री शाह ने जनसेवा का संदेश फैलाने के लिए वडनगर से वाराणसी तक साइकिल रैली को रवाना किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत से सर्वथा स्पष्ट होता है।
6: हमने जो कल्पना रखी है 2047 में पूर्ण विकसित भारत की, वो कल्पना की पूर्ति के लिए अनेक ऐसे युवा चाहिए, अनेक ऐसे किशोर चाहिए, अनेक ऐसे बालक चाहिए जो आने वाली 3 पीढ़ी तक नरेंद्र मोदी के रास्ते पर अपने जीवन को आगे बढ़ाकर भारत प्रथम के मंत्र को सफलता के साथ करे।

0: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से गुजरात के वडनगर के लिए बाइक रैली रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज पूरे पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सोशल मीडिया संदेश में महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
1: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। इस योजना में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री को जन्मदिन के अवसर पर देश विदेश से शुभकामनाएं मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भारत में रूसी दूतावास ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेश साझा किया। इस बीच नई दिल्ली स्थित कई दूतावासों और विदेशी राजनयिकों ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से श्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। जापान के राजदूत ओनो केइची ने विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन पर मिल रही इन शुभकामनाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक आशीर्वाद देश की जनता की सेवा करने के उनके संकल्प को अधिक दृढ़ बनाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है।
2: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 30 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक काम और हुनर से जुड़े विश्वकर्माओं को आगे बढ़ने में मदद करना है। इसके तहत उन्हें आधुनिक औजार, प्रशिक्षण, आसान शर्तों पर ऋण और बाजार से जुड़ने का अवसर दिया जाता है ताकि वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब तक करीब 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक विश्वकर्माओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण महज 5% की दर पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 18 लाख से ज्यादा आधुनिक टूल किट भी इंडिया पोस्ट के माध्यम से विश्वकर्माओं के घर पहुंचाए जा चुके हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक हुनर को आधुनिक साधनों से जोड़कर विश्वकर्माओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। श्री हरीश ने आतंकवादियों के साथ साथ उन्हें सहायता, वित्त पोषण, सहयोग और शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आग्रह किया।
3: Draining the swamp that provided an
4: इस दलदल को सुखाना बेहद जरूरी है जिसने 9/11 के साजिशकर्ताओं को पनाह दी। उसके बाद के वर्षों में भी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे अलकायदा से जुड़े संगठनों को भी मदद करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे पनाह गाहों की निरंतरता को रोकने के लिए एकजुट होना

0: चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे और व्यक्ति किसी भी देश या उसके नागरिकों पर ना थोपे जाएं और कोई भी अपने परिवार और प्रियजनों को ना खोए।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: देशर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम व्यापक हेउछि एवं एहा नवसृजन निवेश अभिवृद्धि पई नूतन मार्ग उन्मुक्त करिछि बोली प्रधानमंत्री कहिछन्ति। विश्वस्तररे सेमीकंडक्टर शिल्प क्षेत्ररे भारतको एक पसंदयोग्य राष्ट्र भाबे स्थानित करिबा लागि सरकार आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करुछन्ति। भारतरे निर्मित चिप्स एबे देश तथा विदेशरे मध्य उपलब्ध हेउछि। एही सम्मेलनरे 600रु अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनी एवं 50रु अधिक देशर प्रतिनिधि अंशग्रहण करुछन्ति। जापान, दक्षिण कोरिया, मालेसिया, नेदरलैंड्स, सिंगापुर और स्वीडन समेत भारत 12 राज्यर प्रदर्शनी मंडप खोला जाइछि। सहयोग, निवेश, नवसृजन एवं दक्षता विकासकु त्वरान्वित करिबा लक्ष्यरे एही तीनि दिनिया सम्मेलनी अनुष्ठित हेउछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज नुआदिल्ली गस्तरे जिबे। जशोभूमिठारे चलिथिबा सेमिकन इंडिया 2026 पंचम संस्करण रे श्री माझी जोगदेबे। ओडिसारे पूंजी निवेश संपर्कित विभिन्न विषय उपरे यूरोप, जापान, दक्षिण कोरियार शिल्प प्रतिनिधिक सह मुख्यमंत्री आलोचना करिबे। ओडिसाकु सेमिकंडक्टर हब करिबा पई राज्य सरकार योजना करुछन्ति बोली मुख्यमंत्री कहिछन्ति। एही अवसररे आसंताकाले दिल्लीरे आयोजित एक रोड शो कार्यक्रमरे मुख्यमंत्री जोगदेबे बोली जणापडिछि। विश्व निर्माणकर्ता प्रभु विश्वकर्मा पूजा पई आज राज्य विभिन्न स्थान उत्सव मुखर हो देवशिल्पी पूजा अश्विन कन्या संक्रांति में पालन राज्यर शिल्पानुष्ठानगुड़े प्रभु विश्वकर्मा पूजा कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पवित्र विश्वकर्मा पूजा अवसर में शुभेच्छा जनई सृजन निर्माण और कौशल देवता प्रभु विश्वकर्मा अपार कृपार समस्त जीवन में सुख समृद्धि और प्रगति भरी जाऊ। नयगढ़ जिलार सदर महकुमा समेत 8 ब्लक्र 102 स्थान में विश्वकर्मा पूजा अनुष्ठित होउछि। महिला नेतृत्व में विकास एवं समृद्धि संकल्प नहीं राज्य में लागू होता सुभद्रा योजना को आज 2 पूर्ण होलक्षे आंगनवाड़ी केन्द्र और विभिन्न स्थान में स्वतंत्र कार्यक्रम अनुष्ठित होउछि। उपकूल सुरक्षा को सुदृढ़ करने समुद्र पथरे संभाव्य अनुप्रवेश को रोकने लक्ष्य गंजाम उपकूल में मिलित समराभ्यास सागर कवच आरंभ हो भुवनेश्वर आंचलिक शिक्षा प्रतिष्ठान आनुकूल्य पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय नंबर 3 2 क्यारियर प्रदर्शनी उद्यापित हो जाएगी। पाणिपाग थाइलैंड उत्तर भाग में सृष्ट घूर्णिवलय आसंता शनिवार सुधा पूर्व केन्द्रीय बंगोपसगर में लघुचापे परिणत होवार संभावना रही पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग्क गति 23 तारीख सुधा उपकूल छुईबार संभावना रही। पाणिपाग विज्ञान केन्द्र सूचना अनुसार लघुचापर प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होने अनुमान आसंता 24 घंटा मध्य बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा होने 20 जिला सतर्क सूचना जारी। प्रधानमंत्री सुशासन 25 वर्ष पूर्ति अवसर में देशव्यापी आज आरंभ हो सेवा संकल्प अभियान। प्रधानमंत्री निरवच्छिन्न सेवा देशर प्रगति को त्वरान्वित कहले मुख्यमंत्री। घरे घरे आशीर्वाद दीप जल्वाक जनसाधारण को कले नवेदन। देश में सेमिकंडक्टर इकोसिस्टम नवसृजन निवेश अभिवृद्धि पई नूतन मार्ग उन्मुक्त कहले प्रधानमंत्री। राज्यर शिल्पानुष्ठानगुड़े भक्ति उत्साह पालन कर प्रभु विश्वकर्मा पूजा एवं आसंता शनिवार सुधा बंगोपसगर में लघुचाप सृष्टि संभावना प्रभाव में 20 जिले में प्रबल वर्षा। आंचलिक संवाद बर्तमान परवर्त आंचलिक संवाद शुणिपारे सन्ध्या 6:45। नमस्कार।

0: ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କେତୋଟି ହିନ୍ଦୀ କଥାଚିତ୍ରର ଗୀତ। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା, ଏଥର ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ। ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ କନକଲତା। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। इसके पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन करने के बाद स्वयं भी रक्तदान किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खाटू श्याम मंदिर में हवन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लिखित एक लेख साझा किया है। इस लेख में भारत के समावेशी विकास पथ का उल्लेख किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने सरकार की मूल नीति सबका साथ सबका विकास पर बल दिया है। लेख में श्री कोविंद ने बताया है कि कैसे भारत की विकास गाथा उन लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में ला रही है जो पहले अनसुने, अनदेखे या उपेक्षित थे। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से 11 सितंबर के हमलों के पीड़ितों को याद करने का आह्वान किया।
3: Draining this swamp that provided an
4: इस दलदल को सुखाना बेहद जरूरी है जिसने 9/11 के साजिशकर्ताओं को पनाह दी। उसके बाद के वर्षों में भी लश्करे तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे अलकायदा से जुड़े संगठनों को भी मदद करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे पनाह गाहों की निरंतरता को रोकने के लिए एकजुट होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे और व्यक्ति किसी भी देश या उसके नागरिकों पर ना थोपे जाएं और कोई भी अपने परिवार और प्रियजनों को
1: जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी पर आधारित संयुक्त

0: आतंक रोधी अभियान में दो आतंकवादी मारे गए हैं। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो रही है। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने कहा है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग में निहित जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। वे आज NABFID वार्षिक अवसंरचना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani.

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, स्वागत करती हूँ आप सबका। तो आइए हमेशा की तरह आज एक बार फिर से सुनते हैं सुविचार, जिसे हमें भेजा है मिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं, पेड़ हमें जीवित रहने के लिए जरूरी कई लाभ प्रदान करते हैं, जिनमें स्वच्छ हवा, साफ पानी, छाया और भोजन शामिल हैं। वे हमें आशा और अंतर्दृष्टि भी देते हैं और दृढ़ रहने का साहस भी। पेड़ हमें ऊंचाइयों पर उड़ते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना सिखाते हैं। बहुत ही अर्थपूर्ण संदेश भेजा है आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों हम पेड़ों पर ही चर्चा कर रहे हैं, ऐसे समय में आपका ये संदेश बहुत प्रासंगिक है। और हमें अगला संदेश मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ भुज से जगदीशोरी, पूजा और पायल जी का। ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से वारिस अली खान, इस्लामुन, निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश लिखते हैं, नदी का सफर हमने सुना, कहानी रोचक, ज्ञानवर्धक और लाभप्रद लगी। शिकायत, मैं काफी दिनों से मेल कर रहा हूँ लेकिन आज तक मेरा कोई भी मेल नहीं पढ़ा गया है, क्या आपको मेरा मेल नहीं मिलता है? जी, इसके लिए हम कहना चाहेंगे, देखिए जैसे ही आपका मेल हमें मिला हमने तुरंत शामिल कर लिया है। कई बार विलम्ब जरूर हो जाता है क्योंकि हमें सभी श्रोताओं के संदेशों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मेल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव खिंदासर, तहसील खोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी, मेन रोड तेलहारा, महाराष्ट्र से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, सुनील पोहरकर, साहिल पोहरकर और कुमारी सुजाता पोहरकर, आप सभी श्रोताओं को हार्दिक धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं हम इस सप्ताह पर्यावरण से जुड़ी दुनिया की अनेक लोक कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। इन लोक कथाओं को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण से जुड़े मनोरंजक लेकिन उपयोगी संदेशों को आपके सामने लाना। प्रिय श्रोताओं, आज हम रूस में प्रचलित एक अनोखी मान्यता के बारे में बात करेंगे। रूस के जंगलों में रहने वाले प्राचीन काल के लोगों की एक मान्यता थी, उनके जंगल का कोई रहस्यमय रखवाला है और उस रखवाले का नाम है लेशी। मैं आपके लिए दोहरा दूं, उसका नाम है लेशी। लोग कहते हैं लेशी न देवी है न देवता है, लेकिन वो एक रहस्यमय पात्र है और जंगल का असली मालिक वही है। लेशी लोगों की कल्पना द्वारा गढ़ा हुआ पात्र है। श्रोताओं, लेशी को पात्र मानकर रूस में बच्चों को बहुत सारे पर्यावरण की रक्षा से संबंधित मजेदार संदेश दिए गए हैं, लेकिन कैसे संदेश, आइए जानते हैं। वहां के जंगलों में पुराने लोग और माता पिता अपने बच्चों को लेशी की कहानियां सुनाते हैं और कहते हैं, जंगलों को यदि तुम स्वार्थ के लिए नुकसान पहुंचाओगे तो लेशी तुम्हें सजा देगा। यदि तुम जंगल में कहीं आग जलाकर छोड़ दोगे तो सावधान, कोई देखे या नहीं देखे लेशी तुम्हें देख लेगा। अगर तुम पशु पक्षियों को सताओगे, उन्हें तंग करोगे तो लेशी तुम्हें भी तंग करेगा। माता पिता बताते हैं, लेशी बुरा नहीं है, वो सबको प्यार करता है, लेकिन जंगल प्रकृति और पर्यावरण का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता। और हाँ, जंगल के किनारे रहने वाले गाँव में यदि बच्चे ऊंची आवाज में बात करें तो माता पिता या दादा दादी कहते थे, ऊंची आवाज में मत चिल्लाओ, रात को पेड़ सोते हैं उन्हें तकलीफ होती है, और जब उन्हें तकलीफ होती है तो लेशी को भी बुरा लगता है। रात को घरों में बच्चे पूछते हैं, लेशी कैसा दिखता है? तो लोग अपनी अपनी कल्पना से पुरानी किंवदंतियों के अनुसार बताते हैं, लेशी कभी कभी पेड़ जैसा विशाल दिखता है तो कभी घास जितना छोटा। जब पेड़ से बात करता है तो पेड़ की तरह विशाल हो जाता है, जब किसी घास को मित्र बनाता है तो घास की तरह छोटा हो जाता है, कुल मिलाकर वो बहुरूपिया है, इत्यादि इत्यादि। तो आइए चलते हैं, आज हम आपको लेकर चलेंगे रूस के घने जंगलों में। ऐसे जंगल जहाँ पेड़ इतने विशाल हैं कि दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुँचती है। कल्पना करें कि एक जंगल में कुछ लोग गए, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ हैं, पेड़ों को काटने के लिए आरियाँ हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लाभ कमाना है। तो सवाल है, ऐसे में लेशी क्या करेगा? वो तो जंगल का रखवाला है, कैसे जंगल को बचाएगा? आइए सुनते हैं उस मान्यता के अनुसार लेशी क्या करेगा। वो उन लोगों को जंगल में भटका देगा और उस जगह पर पहुंचने ही नहीं देगा जहां जाकर वे पेड़ों को काटना चाहते हैं। वो प्रकार प्रकार का रूप

धारण करेगा और उन लोगों को कई ऐसे ऐसे रास्ते दिखाएगा जिनसे उन पेड़ों तक पहुंचा ही ना जा सके। लेशी उन्हें तब तक चकाता रहेगा जब तक वे परेशान होकर पश्चाताप न कर लें, और जब वे समझ जाएं कि उन्होंने गलत किया है, लेशी उनका प्यारा दोस्त बन जाएगा और जंगल से बाहर निकलने और सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने में मदद करेगा, या उस रास्ते से ले जाएगा जहां काटने के लिए सूखे पेड़ हों। तो श्रोताओं, एक प्रश्न और सुनिए, यदि कोई बस मनोरंजन के लिए शिकार करने जाएगा तो लेशी क्या करेगा? तो यहाँ भी लेशी शिकारी को खूब परेशान करेगा। वो कई पशुओं का रूप धारण करेगा ताकि शिकारी उसका पीछा करें और असली पशु बच जाएं। तो साथियों, ये थी रूस की प्राचीन किंवदंती। है तो काल्पनिक, लेकिन कोई संदेह नहीं है कि ये बड़ी मजेदार और पर्यावरण संरक्षण का ठोस संदेश देती है। कितनी सुंदर बात है, आज विज्ञान हमें बताता है कि जंगल पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने, जल चक्र को बनाए रखने और असंख्य जीवों को आश्रय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन सदियों पहले लोग, जब शायद विज्ञान की इन शब्दावलियों को भी नहीं जानते थे, उन्होंने अपनी भाषा में कहा, किंवदंतियों में कहा, लोक कथाओं में कहा, जंगल का भी

संरक्षण का ठोस संदेश देती है। कितनी सुंदर बात है, आज विज्ञान हमें बताता है कि जंगल पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने, जल चक्र को बनाए रखने और असंख्य जीवों को आश्रय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन सदियों पहले लोग, जब शायद विज्ञान की इन शब्दावलियों को भी नहीं जानते थे, उन्होंने अपनी भाषा में कहा, किंवदंतियों में कहा, लोक कथाओं में कहा, जंगल का भी एक रक्षक है। तो आइए अंत में सुनते हैं कि प्यारा और सबका मित्र लेशी उमंग कार्यक्रम में क्या कहना चाहता है। लेशी कह रहा है हम सबको कि जंगल में प्रवेश करो तो उसके मालिक बनकर नहीं, अच्छे अतिथि बनकर जाओ। जंगल तुम्हारी बड़े प्यार से पूरी आवभगत करेगा। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको लेशी की कहानी, जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का मजेदार प्रश्न। यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि कोई स्वार्थवश जंगल में लकड़ी काटने जाए तो लेशी उसके साथ क्या करता है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा आज का शैक्षिक कार्यक्रम है विश्व शिक्षक रविन्द्रनाथ ठाकुर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार? कृषक जहां खेती करते हैं, ईश वहां है।
1: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सॉनेट शैली में लिखे गए हैं। सॉनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं, जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
2: जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल भंगा, विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, काहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे।
1: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांको की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी, उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रवि

0: रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
1: आमार सोनार बांग्ला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणे बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: আমাদের শান্তি নিকেতন, আমাদের
2: শান্তি। সন 1901 में শান্তি নিকেতন आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी।

0: और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
2: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
0: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
2: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूं, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
0: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून, न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

0: सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।
1: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है, तो अब

0: रोहन नौरिया रो लव स्टोरी रो मैच हला आरंभ उभय खाइले इटालियन क्विजिन वेटर फोपड़िला स्पिन 4000 रो बिल आसिला रोहन रो हृदय जोर रे धक धक हेला जाईथिला भूली से नेबा को निजरो वॉलेट रिया हे गला कूल आउ कला डिजिटल पेमेंट आपनो भी क्यूआर कोड स्कैन करिके यूपीआई रे करंतु पेमेंट डिजिटल पेमेंट करा जितंतु लाइव रो प्रति टूर्नामेंट
1: भारत करे डिजिटल देय प्रदान
2: सहज अटे प्रति दिनेण देण
3: कौन आपण आईटीआई प्लस टू डिप्लोमा किंबा बीटेक कंप्लीट करिबा परे निज करियर बूस्ट करिबा को चाहुछंती
4: तेबे स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिसा द्वारा वर्ल्ड स्किल सेंटर रे 1 ईयर एडवांस स्किल डेवलपमेंट कोर्स रे भाग नियंतु जेउथिरे आपण को मिलिबा इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग ग्लोबल एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज ओ 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस
3: बैच 10 सेप्टेंबर 26-27 एडमिशन आरंभ होई सारिछि आवेदन रो शेष तारीख 30 सेप्टेंबर 2000
4: अधिक जानिबा पई विजिट करंतु www.worldskillcenter.org किंबा कॉल करंतु 1800 266 002

0: प्रतिभाविकासस्य च संवर्धनाय केन्द्रितमस्ति। अत्रावसरे भाषमाणः प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् भारतस्य अर्धचालक पारिस्थितिकी तन्त्रं तीव्रगत्या प्रसरति, यच्च नवाचाराय, निवेशाय, विकासाय च नूतनान् अवसरान् उद्घाटयति।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्रीमोदी न्यरूपयत् यत् एकत्र भारतस्य अर्थव्यवस्था संवर्धते, अपरत्र च भारतमालक्ष्य वैश्विक विश्वासोऽपि दृढीभवति। तेन प्रतिपादितं यत् समवान पूर्णायां वैश्विक परिस्थितौ अपि भारतेन 7.8% वृद्धिमानाङ्कः पञ्जीकृतः। अस्मिन्नेव काले जापान देशस्य ऋणमूल्याङ्कन संस्थया भारतस्य सार्वभौम ऋण श्रेणी समुन्नयिता। प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् देशस्य प्रत्येकम् अपि नागरिकः विकसित भारतस्य निर्माणाय संकल्पबद्धतया कार्यं करोति।
1: भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है।
0: अवसरे अस्मिन् केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवोचत् यत् क्षेत्रे अस्मिन् आधारशिला स्थापिता अस्ति, अग्रे च सेमिकॉन 2.0 इति योजनायाः माध्यमेन उद्योगनिर्माणं भविष्यति। या 6 प्रमुखस्तम्भेषु आधारिता अस्ति। एतेषु स्तम्भेषु अर्धचालक अभिकल्पना यन्त्राणि, स्मृतिघटकाः, सिलिकॉन तत्त्वं, मिश्रित तार्किक निर्माणघटकाः, अनुसन्धान विकासश्च अन्तर्भवन्ति। मन्त्रिणा विज्ञापितं यत् सर्वकारेण भारते अर्धचालक आवश्यकतानां सम्पूर्णक्षेत्रे चिप अभिकल्पनायै न्यूनातिन्यूनं 200 नूतन उद्यमान् संस्थाश्च समुपकर्तुं लक्ष्यं निर्धारितम्। अत्रावधेयं यत् भारतस्य अभिकल्पना सामर्थ्यं विश्वविश्रुतमस्ति, अतः सेमिकॉन 2.0 इति योजनायाः अन्तर्गतम् अर्धचालक अभिकल्पना संस्थानां संवर्धनमेव प्रमुखं लक्ष्यं भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् इत्येतावद्य प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदिने तस्य जन्मदिवसे हार्दिक्यः शुभाशंसाः प्राकटयताम्। सामाजिक सञ्चारपटले सन्देशं प्रेषयन्ति राष्ट्रपतिः मुर्मुः, विगतेषु 25 वर्षेषु श्रीमोदिनः अनुकरणीयां लोकसेवां, राष्ट्रनिर्माणाय च तस्य अभूतपूर्वं योगदानं प्राशंसयत्। उपराष्ट्रपतिना न्यरूपयत् यत् श्रीमोदिनः दूरदृष्टि सम्पन्ने नेतृत्वे भारतं विश्वस्मिन् हि विश्वे एकं प्रकाशमानकेन्द्रत्वेन विभाति, अथ च विश्वस्य तीव्रगत्या वर्धमानासु प्रमुखार्थव्यवस्थासु अन्यतमं वर्तते। अपरत्र कांग्रेसाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे, लोकसभायाः विपक्षनेता राहुल गांधी चापि अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं जन्मदिवसस्य शुभाशयान् व्याहरताम्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः सतत सार्वजनिकजीवनस्य, लोकसेवाव्रतस्य च 25-वर्षीयपूर्णताम् अवबुध्य भारतीयजनतादलस्य मासात्मकं देशव्यापी सेवासङ्कल्पाभियानम् अद्य प्रभृति अबाधितप्रामाण्येन समालब्धम्। आगामिमासस्य 17 दिनाङ्कं यावत् आनुपूर्विकक्रमेण प्रवर्तयिष्यमाणस्य अस्य अभियानस्य प्रथमः दिवसः सेवादिवसः इति सम्भाव्यते। यस्यान्तर्गतं देशस्य समस्तप्रान्तेषु रक्तदानशिबिराणि आयोजितानि। नवदिल्ल्यां दलमुख्यालये दलाध्यक्षेण नितिननवीनेन रक्तदानशिबिरस्य उद्घाटनं विहितम्।

प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co

सुभद्रा योजना के आज पूरी दुई बछर और राज्य शिल्प अनुष्ठान मान के भक्ति और उष्णाकृति सहित पालन करा जाई छे देवशिल्पी विश्वकर्मा पूजा आज आंचलिक खबर इन शेष है जुहार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय से

0: सहकारी समिति बैंक शाखा अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
1: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: नवघन भाई जुहारे जुहारे।
3: ओ भारी चिंतित जना पड़ुच।
2: करिबिनी चिंता।
3: कौन है
2: ये तुम जो माधिया भाई पुओ?
3: हाँ।
2: गाड़ी नहीं की कहू जीव
3: सी
2: पाठ पढ़िया को
3: जीव।
2: हाँ
3: तुम कौन गला
2: जमा मो मन बुझुनी
3: बुझुनी
2: ना
3: कई
2: ता बयस केते कहिलो
3: केते
2: अठर रु कोड़िए।
3: हाँ से तो गाड़ी चलेब तुम कौन सुविधा
2: जाम गाड़ी चलेब
3: मला आज तुम दुआरे तीन टा गाड़ी ठिया हेला सब तक पूजा होता हल नंगल सब पूजिल विश्वकर्मा पूजा भोग तुम घरे जिनिष तुम घरे आ खाली या ता ना बस गपुच्च
2: जमा या ता ना नुहे पूजा हेला गाड़ी पूजा हेला मेसिन पूजा हेला मो बहु जो सिलई मेसिन खंडे थोई से पूजा हेला पूजा हबनी
3: माने
2: विश्वकर्मा पूजा परा
3: मु तो सेया कहतली आउ
2: तम पई भोग आनी छी
3: आनी छौ
2: हां एठी एई रहिला ए गीत सुनला बेले खाइबो मु जानी छी
3: हां
2: आखी बुझी देई गीत सुनिबो
3: हां
2: ता भीतर छरी जाथिबो जिंस
3: केवल निंदा करिया व्यतीत आउ भलो किछि सिखि
2: निंदा करूनी भाई
3: आउ
2: वर्तमान रो पिलांग कथा मु कहू छी
3: कोन
2: से जो माध्या भाई पुओ
3: हां
2: कहिला फटोफटिया नै कि जीव
3: जीव
2: पाठ पढिया को मो मन बुझुनी
3: अच्छा
2: काहे कि कहुना
3: पचल्ली
2: पिल्ला जदि समस्ते फटोफटिया नै कि पाठ पढिया को जिबे ये परिवेश रहिबटी
3: हां
2: काहे कि साइकिल नै कि जाउ ना
3: ओहो
2: पादर चली चली जाउ ना
3: हां
2: राती पाइले तेल को पड़िबो परिवेश नष्ट करिबो ता सहित वर्तमान देखु छ केते बेळ कोन घटुची
3: तेमे किछि बुझुनो ता बापारो पैसा अछि से खर्च करिवो तमरो कोन असुविधा हला
2: से कथा नुहे भाई बापारो पैसा अछि पुओ गाड़ी चलै यदि समस्त को पाखर तो वर्तमान पैसा अछि
3: अच्छा
2: समस्त खटुचंती
3: तेमे गला खाली बकर बकर बकर बकर होचो मूल कथा उपर को आसो
2: आसुचि
3: हां श्रोता बंधु एई जो वर्तमान रो अवस्था आमे देखु छे हो कोटी हिम पर्वत तरली की बोही जाउचि जे सह सह लोकों को जीवन गला
2: यही तो देखु छ आमरी अंचल रे केते वर्षा हे कि बढी पानी माडी कि रहिला
3: हां केते धन जीवन नष्ट
2: हां
3: जुआडे अनैले विपर्जय
2: सबुरी मूल रे आमे माने दाई
3: काहे कि
2: एइमिति गच्छ को काटिले
3: काटिले
2: एई कंक्रीट जंगल तयारी कले
3: अच्छा
2: विकास हबो किंतु विकास ना रे आमे जदि एमिति गच्छ काटी चालीबा कंक्रीट जंगल तयारी करि चालीबा आमरो परिवेश रहिबटी
3: तमकु तमु या आज आइला बेलो ठो कहू छी खाली निंदा करिया व्यतीत तो भलो किछि तमु मुंडु को ढुकु नै
2: ना ना पिला मानन को बुझै छी
3: बुझै छ
2: संग हे कि साइकिल नै कि से माने पाठ पढिया को जिबे
3: मूल विषय को आसीबा
2: आसु छी
3: निर्भरशीलता आमरो बढी बढी चली छी जते बेले आमे सब छुआ छुआ थेलु आदेरे चली कि माइली माइली बाटो जाउथु
2: आ सेइति पई वर्तमान पर्यंत सुस्थ अछ परा
3: ओ द्वितीय कथाटी बुझो
2: हां बुझुची
3: ना रास्ता घाटो थेला
2: ना
3: ना बिजुली बत्ती कोन आमे देखि थेलु
2: ना
3: सेइति बिरी आलु रे जीवन आमर बितु थेला
2: हां
3: पुनी बची थेलु ना नाही
2: बंची थिलु सुस्थ रे बंची थिलु
3: आउ गोटिए जिनिस बुझो
2: कोउ जिनिस कहिला
3: आखी बुलेई देला बेळुकु कुढो कुढो जरी प्लास्टिक सोलो एई सब जिनिस
2: भाई मोर मने पडिला
3: कोन
2: एमिति जदि एमाने व्यवहार करिवे आउ किछि दिन पर चारियाडे खाली प्लास्टिक कुडा कुडा बोतल थिबो
3: एटा होउची जलवायु परिवर्तन पछरो गुटा प्रमुख कारण
2: हां आमे वर्तमान थरु सचेतन होबा
3: श्रोता बंधु जरी होउ प्लास्टिक होउ बस हे जत सामग्री गुडीको
2: ताकु जेते कम व्यवहार करिबा न व्यवहार करले भलो त माने लोक सचेतन हेलेनी
3: हेलेनी
2: केतेक जागा रे व्यवहार करूचन
3: केतेक जागा रे कोन एणी की आम मानु को निष्पत्ति नबा को पड़िबो पवित्र विश्वकर्मा पूजा ये विश्व को जदि बंचेई रखिबार इच्छा अछि
2: जैविक खत सार देई चासवास करले आउरी बढ़िया
3: गोवंशर विस्तार हवा आवश्यक
2: आउ गाड़ी मोटर व्यवहार कम करिबा साइकिल व्यवहार करिबा चली चली के जिबा
3: सुस्थ रहिबा ओ जदि एते कथा कहिलो
2: संध्या बेळ एते कथा हेलेन गीत टिए सुनिबा
3: बोली गीत
2: हां तापर कथा हबा
3: पुनी कथा
2: आउ
3: हौ
4: नडी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में उन्होंने देश को वैश्विक विनिर्माण चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्वसनीय और तैयार केंद्र बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में एक प्रेस वार्ता में श्री वैष्णव ने कहा कि कई बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉप्लर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉप्लर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत

0: लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत जी रामजी योजना विकसित गांवों के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। श्री चौहान ने अधिकारियों को योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। यह कोर्स इन शिक्षकों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की योग्यता और प्रमाण पत्र दिलाने में एक अहम माध्यम साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए गए यूपीआई लेनदेन बिना किसी राशि सीमा के पूरी तरह निशुल्क रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि यूपीआई ग्राहकों के लिए निशुल्क बना रहेगा। परिचितों को पैसे भेजने पर दुकानदारों के निजी खाते में भुगतान करने या क्यूआर कोड स्कैन कर लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि रेलवे और ईंधन के लिए 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर प्रति लेनदेन 5 रुपये का मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत ई वाहन और सतत परिवहन की दिशा में भूटान को सहयोग कर रहा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला दिल्ली में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 ओवर में बिना विकेट खोए 109 रन बना लिए हैं। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत 2 मुकाबले जीतकर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said India is emerging as a reliable destination for global manufacturing and is preparing to meet new challenges. Mr. Modi stated this while inaugurating 5th edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi today. The Prime Minister highlighted the growing demand for artificial intelligence, saying the focus is now shifting beyond transistor size to overall system integration, including memory placement and heat management.
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने transmission network को भी expand किया है. साथियों, भारत में power infrastructure का यह विस्तार हमारे semiconductor ecosystem के लिए भी एक बड़ी strength है. भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: लेटर एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन द साइडलाइंस ऑफ द इवेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सेड इंडियाज सेमी कंडक्टर डिजाइन केपेबिलिटीज आर रिकग्नाइज ग्लोबली एंड सेमिकॉन 2.0 विल फोकस ऑन प्रमोटिंग सेमी कंडक्टर डिजाइन कंपनीज इन द कंट्री। ऑल पर्सन टू पर्सन यूपीआई ट्रांजेक्शंस विल रिमेन फ्री रिगार्डलेस ऑफ अमाउंट। Sources in the government said that UPI will continue to be free for customers. Sending money to friends, paying at shops or scanning a QR code will remain free of any charges. Sources also said that vendors earning up to 1 lakh rupees per month via UPI QR codes will continue to attract zero charges. They informed that all RuPay debit card linked UPI transactions will also continue to remain free of any charge. As per the sources, around 96% of person-to-merchant, that is P2M UPI transactions, will remain unaffected. However, transactions above 2,000

0: rupees in essential sectors such as railways, fuel and others will attract a flat merchant discount rate MDR of 5 rupees per transaction. Prime Minister Narendra Modi today said the BJP government in West Bengal aims to ensure that not a single eligible woman is deprived of the benefits of the Annapurna Yojana and is working relentlessly towards that goal. Mr. Modi stated this while virtually addressing a gathering in West Bengal on the occasion of the release of the fourth installment under the Annapurna Yojana, providing 3,000 rupees per month to around 1.5 crore women.
1: आज विश्वकर्मा पूजा का पावन अवसर भी है मैं आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं साथियों इसी पावन समय में आज बंगाल में एक नई परंपरा सशक्त हो रही है आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूं अपनी शुभकामनाएं देता हूं साथियों
0: द भारतीय जनता

आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। मधुरिमा में बहुत बहुत स्वागत है आपका, मैं हूँ विभा, नमस्कार। कुछ राग ऐसे होते हैं जिनमें ढलते दिन की खास अनुभूति समाई होती है। थोड़ा ठहराव, थोड़ी प्रतीक्षा और कभी कभी मन में उठती कसक, ऐसा ही एक राग है राग पटदीप। दोपहर के उत्तरार्ध में गाया बजाया जाने वाला ये राग अपने सुरीले, भावपूर्ण और विरह श्रृंगार से जुड़े रंग के लिए जाना जाता है और हिंदी फिल्म संगीत ने भी इसके भावों को बेहद खूबसूरती से अपनाया है। आइए सुनते हैं एक गीत इसी राग पर आधारित, फिल्म साज और आवाज़ से, जिसमें नौशाद साहब की मधुर धुन है और रफ़ी साहब की आवाज़।

कभी कभी किसी की याद इतनी गहरी हो जाती है कि दिल बस एक ही सवाल पूछता है कि तुम बिन जाऊं कहां। जी हाँ, फिल्म है प्यार का मौसम और इस फिल्म का ये लोकप्रिय गीत रफ़ी साहब की आवाज़ और आर डी बर्मन के संगीत में घुल मिलकर राग पटदीप के भावों को एक अलग ही अंदाज में प्रस्तुत करता है। आइए सुनते हैं।

मधुरिमा सुन रहे हैं आप विभा के साथ, और आज हम जिस राग पर आधारित गीत सुन रहे हैं वो है राग पटदीप। अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसमें संकोच भी है, प्रेम भी, और कदम कदम पर छुपी हुई शरारत भी। फिल्म चुपके चुपके से लता दी की आवाज़ में।

तो ये थी आज की हमारी मधुरी माँ राग पटदीप के सुरों में ढले कुछ यादगार गीतों के साथ। आज बस इतना ही, विभा को दीजिए इजाजत, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अतर सईद।
1: जी हां, हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान की हर ताज़ा खबर के साथ, जहां हमारे साथ होगी हर मैच की अपडेट, हर मैदान का हाल, वो भी सब कुछ विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक। सबसे पहले हेडलाइंस।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का अंतिम मुकाबला नई दिल्ली में जारी। अभिषेक शर्मा 30 गेंद में शतक लगाकर सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने। जापान के खिलाफ किताब बचाने के अभियान की शुरुआत करेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। वेस्टइंडीज के साथ आगामी क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा। और डेविस कप क्वालिफायर दूसरे दौर के मुकाबले में कल भारत का सामना कोरिया से।
1: तो शुरुआत करेंगे क्रिकेट की खबर के साथ। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला इस समय दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। शक्ति, इससे पहले कि हम आगे चर्चा अपनी शुरू करें, इस मैच की अब तक की ताज़ा अपडेट क्या है?
0: अतर, बता दें कि इस समय 12 ओवर और 5 गेंद का खेल हो चुका है और भारतीय टीम जो पहले बल्लेबाजी कर रही है उसने 164 रन स्कोर बोर्ड पे चढ़ा लिए हैं और वर्तमान में संजू सैमसन 50 रन और कप्तान श्रेयस अय्यर 4 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं।
1: यानी संजू सैमसन का अर्धशतक मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इससे पहले का कमाल की बल्लेबाजी की है अभिषेक की, जितनी प्रशंसा की जाए वो उतनी कम होगी। आशक्ति, 34 गेंद में 108 रन, क्या कहते हैं?
0: कुछ कहा ही नहीं जा सकता ऐसी पारी जिसके लिए शब्द कम पड़ जाएं अतर। और जब मैदान में आज अभिषेक उतरे तो लोगों को लगा था कि क्या अफगानिस्तान क्लीन स्वीप के इरादे को नाकाम करेगी, लेकिन जिस तरह का खेल दिखाया इस खिलाड़ी ने, हर तरफ शॉट और गेंद, ऐसा लग रहा था कि अभिषेक के बल्ले को छूती और सीमा रेखा के पार जाती और सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बन गया आज ये खिलाड़ी।
1: हालांकि मैच से पहले ये सोचा जा रहा था कि क्या अभिषेक आज भी कुछ कमाल कर दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने तो धमाल कर दिखाया आज। उनके बल्ले से एक के बाद एक गेंद जो है रन बटोर रही थी, तो वो जो दृश्य है वो काबिले तारीफ कहा जा सकता है। एक सवाल आपके ही शब्दों में निकलता है, क्या भारत क्लीन स्वीप कर पाएगा?
0: जी बिल्कुल, अब तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का स्कोरबोर्ड आपने 164 रन चढ़ा लिए हैं, 13 ओवर का खेल हुआ है, भारत एक बहुत विशाल स्कोर की तरफ बढ़ रहा है और जिस तरह का डोमिनेंस इस पूरी सीरीज में अरुण जेटली स्टेडियम में देखने को मिला है।

0: मुझे लगता है कि दिल्ली के दर्शकों को एक तीसरे मैच में जीत लगातार स्पष्ट नजर आ रही है।
1: बिल्कुल। और मैच में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए पहले उतरी भारतीय टीम दूसरी अपनी इनिंग की जो शुरुआत करेगी वो बल्लेबाजी से करेगी, तब तक रात गहरा चुकेगी। तो क्या ये टॉस का महत्व कितना बढ़ जाता है ऐसे में, जबकि दिल्ली में मौसम का असर इस समय देखा जाए तो ह्यूमिडिटी लगभग 60% से ज़्यादा है और रात में ओस का जो प्रभाव है और बढ़ जाता है शक्ति।
0: जी बिल्कुल, अफगानिस्तान ने आज टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला लिया, लेकिन अब तक अभिषेक शर्मा के उस पूरे हिट शो के आगे फैसला बिल्कुल गलत साबित होता हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं शुरुआत के दो मुकाबलों में भारत ने टॉस जीता था, गेंदबाजी का फैसला किया था और परिणाम भारत के पक्ष में थे। शायद ऐसा ही कुछ अफगानिस्तान के कप्तान के जहन में चल रहा होगा कि इस बार हमें मौका मिला है, हम गेंदबाजी करते हैं, मैच जीतेंगे, लेकिन पासा पलटता हुआ नजर आ रहा है।
1: और साथ में शक्ति एक चीज़ और है, दिल्ली के दर्शक जो हैं भारतीय टीम को भा गए हैं। दिल्ली के दर्शकों के समक्ष दो लगातार जीतों के बाद तीसरी जीत के मुहाने पर कहा जा सकता है कि भारतीय टीम है। उम्मीद तो यही बता रही है अब तक की बल्लेबाजी के क्लीन स्वीप की ओर भारत बढ़ रहा है।
0: जी बिल्कुल, और जिस तरह की पारी देखने को मिली, कोई मुझे अभी तक यहाँ से हमें दो राय नहीं नज़र आती हुई, और भारतीय टीम एक शानदार जीत और इसके बाद जो टीम को एशिया कप खेलना है, एशियन गेम्स खेलने हैं, उसके लिए एक शानदार अभियान की तरफ बढ़ती हुई।
1: एक अंतिम सवाल, चूंकि संजू सैमसंग इस वक्त जो है पूरे फॉर्म में है, तो उनसे क्या उम्मीदें लगती हैं, क्या वो भी शतक की ओर बढ़ रहे हैं?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि अभी खेल बचा हुआ है तकरीबन 7 ओवर का और संजू सैमसन अर्धशतक पूरा कर चुके हैं। हालांकि थोड़े से दुर्भाग्यशाली रहे और अर्धशतक में अपना विकेट उन्हें गंवा दिया है, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि भले उनका शतक नहीं हो सका, लेकिन टीम एक बड़े स्कोर की तरफ बिल्कुल बढ़ती हुई नजर आ रही है। तर
1: बिल्कुल, आपने सही कहा और हमारी पूरी उम्मीदें, शुभकामनाएं, और साथ में ये भी है कि जो प्रदर्शन है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत निश्चित रूप से ये मुकाबला जीतने की ओर अग्रसर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिछले सप्ताह दुबई में रिकॉर्ड 8वीं बार महिला T20 क्रिकेट एशिया कप जीतने के बाद गत विजेता और खिताब के प्रबल दावेदार भारतीय महिला टीम एशियाई खेलों में कल से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। कल क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान जापान से होगा। ये मैच जापान के नागायो में भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
2: दुबई में खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, लेकिन एशियाई खेलों के नॉकआउट प्रारूप में उनके पास गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होगी। महिला स्पर्धा में 8 टीम भाग ले रही है और प्रतियोगिता सीधे क्वार्टर फाइनल से शुरू होगी। इसका मतलब है कि किसी भी टीम को प्रतियोगिता में परिस्थितियों के अनुरूप ढलने के लिए ग्रुप चरण के मुकाबले नहीं मिलेंगे और एक हार ही अभियान को समाप्त करने के लिए काफी होगी। भारत के लिए सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा का प्रदर्शन काफी अहम होगा। उन्होंने एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें वे टीम के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज के साथ साथ टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं, जिनको स्मृति मानधना का भरपूर साथ मिलने की उम्मीद है। वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर भी एशिया कप के औसत प्रदर्शन के बाद बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगी। गेंदबाजी में भारत के पास काफी विकल्प हैं। भारत की गेंदबाजी काफी हद तक अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा और बाएं हाथ के स्पिनर श्रीचरणी के इर्द गिर्द रहेगी। भारत के सामने मेजबान जापान घरेलू मैदान पर मौके का पूरा फायदा उठाना चाहेगा। जापान को मजबूत भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का सामना करना होगा, उसे भारत के स्पिन विकल्पों के खिलाफ प्रभावी ढंग से खेलना होगा और साथ ही उसके गेंदबाजों को आक्रामक शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को रोकना होगा। इससे पहले कल बांग्लादेश और चीन के बीच मुकाबला बारिश के कारण रद्द होने के बाद ICC में बेहतर रैंक के आधार पर बांग्लादेश को सेमीफाइनल में प्रवेश मिल गया। स्पोर्ट्सकैन के लिए प्रशांत कुमार।
1: शक्ति, भारतीय टीम से इस प्रतियोगिता में क्या उम्मीदें आपको लगती हैं?
0: जिस तरह की हालिया फॉर्म रही है हरमनप्रीत एंड आर्मी की, बिल्कुल वो स्वर्ण पदक को बचाते हुए टीम नजर आएगी। शानदार गेंदबाजी क्रम, मजबूत बल्लेबाजी, और थोड़ा अगर कुछ मोर्चों पे टीम और सुधार कर लेती है तो कह सकते हैं कि जापान में भारतीय टीम पोडियम फिनिश करते हुए स्वर्ण पदक के साथ नजर आ सकती है।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही। गेंदबाजी की अगर बात करें तो गेंदबाजी भारतीय टीम की सबसे मजबूत कड़ी मानी जा रही है। ऐसे में हमारी नज़रें किन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर केंद्रित हो सकती हैं?
0: जी, अगर भारतीय गेंदबाजी की बात की जाए तो 1, 2, 3 नहीं, भारत के पास 4 से 5 शानदार विकल्प हैं। दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, उसके बाद प्रेमा रावत, नंदिनी शर्मा लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, और अभी जब टीम एशियन कप जीत करके आई है वहां पे देखा जाए दीप्ति शर्मा सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी थी, 5 मैचों में 14 विकेट, और वो शानदार स्पेल जो पहले मैच में आया था बिना कोई रन दिए, वो 4 विकेट शायद बहुत मनोबल

0: देगा जापान से पहले इस खिलाड़ी को और उनकी मौजूदगी से इस पूरी टीम के गेंदबाजी महकमे को।
1: अच्छा, बल्लेबाजी की अगर बात करें तो बल्लेबाजी के मोर्चे पर हरमनप्रीत कौर की ये टीम के सबसे मजबूत खिलाड़ी कौन साबित हो सकते हैं?
0: बल्लेबाजी की अगर बात की जाए अतर, तो भारत के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। कुछ मोर्चों पे टीम को काम करने की ज़रूरत है। शेफाली वर्मा की शानदार फॉर्म, हालिया फॉर्म जो है उसका कोई तोड़ नहीं। सबसे अधिक रन बनाए, 5 मैच 236 रन, 3 शानदार अर्धशतक जिनको साथ मिलता है स्मृति मंधाना का, तो कह सकते हैं कि ओपनिंग बहुत अच्छी है। मिडिल ऑर्डर से कुछ और योगदान होगा तो टीम बिल्कुल पोडियम पर पहुँच रही है।
1: बढ़ते हैं अगली खबर की ओर
0: और अब बात की जाए भारत वेस्टइंडीज क्रिकेट श्रृंखला की, जहां वेस्टइंडीज के साथ आगामी क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। श्रृंखला में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के साथ घरेलू सरजमी पर 3 एकदिवसीय और 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी। आइए सुनते हैं इस पर अपने सहयोगी सरफिरोजी की रिपोर्ट।
2: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वेस्टइंडीज के साथ आगामी एक दिवसीय श्रृंखला के लिए टीम की कमान शुभमन गिल को सौंपी है, जबकि केएल राहुल उपकप्तान और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल भी टीम का हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर नीली जर्सी में खेलते नजर आएंगे। इन दिग्गज खिलाड़ियों के अलावा यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और ऑलराउंडर के तौर पर नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर और रविन्द्र जडेजा को स्थान मिला है। वहीं गेंदबाजी की कमान कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, मोहम्मद सिराज और औकिब नबी के हाथों में होगी। बोर्ड ने 5 T20 मैचों के लिए भी भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को T20 की कमान सौंपी गई, जबकि तिलक वर्मा को उपकप्तान बनाया गया है। विकेटकीपर के तौर पर ईशान किशन और संजू सैमसन का चयन किया गया है। युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में स्थान मिला है। इनके अलावा अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस और मयंक यादव भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। श्रृंखला का पहला मैच एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच इस महीने की 27 तारीख को तिरुवेद्रम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच गुवाहाटी में 30 सितंबर को और अंतिम एक दिवसीय मैच चंडीगढ़ में 3 अक्टूबर को खेला जाएगा। जबकि 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच 6 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा, वहीं दूसरा 9 अक्टूबर को रांची में, तीसरा 11 को इंदौर में, चौथा मैच हैदराबाद में 14 अक्टूबर को और दौरे का अंतिम मैच बेंगलुरु में 17 अक्टूबर को खेला जाएगा। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: साइना नेहवाल ने खेलो सानंद उत्सव 2026 का आज उद्घाटन किया। ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने गुजरात के सानंद में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही सानंद में सभी 105 गांवों में 18 दिवसीय ओलंपिक खेल अभियान की शुरुआत हो गई। इस अवसर पर साइना नेहवाल ने कहा कि ये देखकर बेहद अच्छा लगता है कि नई प्रतिभाएं खेल के मैदान पर शानदार प्रदर्शन कर रही हैं।
3: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे बच्चों को मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए देख रही हूँ, कंपटीशन के लिए रेडी होते हुए देख रही हूँ। एंड आई एक उत्सव बनाया जाता है किसी चीज का, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि इतने सारे बच्चे हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं स्पोर्ट्स में। और इससे यही चीज सीखी जाती है कि आई एम श्योर कि अभी वो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल के लिए टारगेट कर रहे हैं। फ्यूचर में हमें यहाँ से इतने सारे प्लेयर्स मिलेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा करेंगे।
0: तो अतर, जब जिलों तक खेल पहुंचता है, जब वो अंतर्राष्ट्रीय पैमानों को पार करके जिलों, कस्बों तक पहुंचता है, तो सिर्फ खेल नहीं खिलाड़ियों का मान बढ़ता है। कितने सहायक हैं इस प्रकार के मंच।
1: बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ग्रामीण अंचलों से जब खेल निकलते हैं तो जिला स्तर पर पहुंचते हैं, और जिला स्तर से निकल कर प्रदेश स्तर पर पहुंचे, राज्य स्तर पर पहुंचते हैं, और उसके बाद राष्ट्रीय परिदृश्य में वो आकर्षण का केंद्र बनते हुए अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देश का नाम रोशन करते हैं। अब कितने ही खेलों की हम बात करें, खेलो इंडिया का अगर हम जिक्र करें, ट्राइबल गेम्स की अगर हम बात करें, युवा खेल की बात करें, तो इनमें से जो खिलाड़ी निकल कर के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ढेरों पदक ला रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है और जो उनका सपना है और जो उनके प्रयास हैं और जो प्रोत्साहन है, उसके अनुरूप हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, पदक ला रहे हैं, स्वर्ण पदक ला रहे हैं और भारत का नाम निरंतर रोशन कर रहे हैं। तो इस तरह की जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भारतीय खिलाड़ियों को मंझने का, तराशने का एक मौका मिलता है, और तराशने के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जब वो पहुँचते हैं तो वो पदक भारत के लिए लाते हैं।
0: जी बिल्कुल, और वो भारत के जो प्रदर्शन है वो मेडल टैली में साफ नज़र आता है कि सात समंदर दूर तक कहीं कोई प्रतियोगिता हो, भारतीय खिलाड़ी अब

0: सिर्फ प्रतिभाग नहीं करते पदक के साथ लौटते हैं।
1: बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। मेघालय में पूर्वोत्तर जोन अंतर्राज्यीय बैडमिंटन प्रतियोगिता लगभग 10 वर्ष के बाद फिर से आयोजित की जा रही है। ये टूर्नामेंट शिलांग के जवाहरलाल नेहरू इंडोर कॉम्प्लेक्स में शनिवार से शुरू हो रहा है। इस प्रतियोगिता में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में 250 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे।
0: वहीं भारतीय टीम कोरिया के खिलाफ डेविस कप क्वालिफायर के दूसरे दौर के मुकाबले में कल उतरेगी, जब उसकी नज़रें डेविस कप के अंतिम 8 में जगह बनाने पर होंगी और एक बार फिर भारत के दक्षिणेश्वर सुरेश से अपेक्षाओं पर खड़े उतरने की उम्मीद होगी। उनका सामना कल सियोल में कोरिया के नंबर 1 खिलाड़ी सुनवू क्लोन से होगा। और अतर कार्यक्रम में थोड़ी सी चर्चा एशियाई खेलों की भी कर ली जाए। बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं, 503 खिलाड़ियों का दल है। बहुत कम समय में समझना चाहेंगे किन खिलाड़ियों से उम्मीदें होंगी।
1: कई सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन विशेष रूप से अगर हम बात करें, आप शायद संक्षेप में करना चाहेंगे, तो पहले तो मैं चर्चा करना चाहूँगा साक्षी चौधरी की। महिला बॉक्सर साक्षी चौधरी ने बेहद कम समय में अपनी खास पहचान बनाई है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में साक्षी का प्रदर्शन ज़बरदस्त रहा और वो स्वर्ण पदक जीतने में सफल रही थी।
0: तो मैं साक्षी के आगे एक नाम अतर जोड़ देना चाहूँगा, अनाहत सिंह से भारत को प्रबल दावेदार हैं। पदकों की स्क्वाश खिलाड़ी हैं, 18 वर्षीय हैं, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती हैं। और मैं बताना चाहूंगा श्रोताओं को, सबसे कम उम्र में भारत के लिए एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली ये खिलाड़ी, इसके पहले 2022 में 2 कांस्य पदक भारत के लिए महज 14 वर्ष की उम्र में जीत चुकी है।
1: दो खिलाड़ियों का और जिक्र करूंगा, अनुष्का यादव हैमर थ्रो में और आयुष शेट्टी के हम जरूर चर्चा करेंगे, वो भी उलटफेर करने में सक्षम है।
0: जी बिल्कुल, दिग्गज खिलाड़ी हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और अपने सुझाव आप हमें स्पोर्ट्सकैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पे भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और अतर को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ और दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
3: बीते 1 दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
2: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश $8 अरब से बढ़कर $13.5 अरब कर दिया गया है। इस चरण में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।
3: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम

0: रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग 8 बिलियन डॉलर्स का था, जबकि सेकंड फेज का 13.5 बिलियन डॉलर तक का हमने तय किया है।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमिकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही।
2: सेमिकॉन के दूसरे चरण में मुख्य रूप से डिजाइन कंपनियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वे स्टार्टअप हों या बड़ी कंपनियां। बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में आना चाहेंगी, क्योंकि अब इसका दायरा बहुत बड़ा है और अवसर भी अपार हैं। स्टार्टअप ऐसे नवोन्मेषी समाधान ला सकते हैं जिन्हें बाजार पसंद करेगा।
3: इनोवेटिव सॉल्यूशंस व्हिच विल बी लाइक्ड बाय द मार्केट।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेन देन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए भी समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छरिंग तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रुपए जमा किए जाएंगे।
5: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
1: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की

0: भागीदारी के लिए माई गॉव प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में एनसीसी कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट से माई गॉव प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के लिए अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
1: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोड मैप बनाने का काम चल रहा है तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप माय गॉव पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
0: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के रहने वाले रोहन राज ने माई गॉव को एक अच्छी पहल बताया।
2: माई जीओवी के जरिए लोग सरकारी योजनाओं और सरकार के अलग अलग कामों की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही लोग अपनी राय और सुझाव भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लोग को सिर्फ जानकारी लेने का मौका नहीं मिलता बल्कि अपनी बात रखने का और देश के विकास में भागीदारी करने का भी मौका मिलता है।
0: इस माई गॉव प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने तिब्बती शरणार्थियों को पिछले 6 दशकों से अधिक समय तक शरण देने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत जी रामजी योजना विकसित गांवों के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 16वां चरण शुरू किया। इस चरण में 9 कोयला उत्पादक राज्यों में स्थित 25 कोयला खंडों की नीलामी की जा रही है। इनमें 21 पूर्णतः और 4 आंशिक रूप से अन्वेषित खदानें शामिल हैं। 9 कोयला उत्पादक राज्यों में अब तक कुल 147 कोयला खदानों की नीलामी हो चुकी है। इस वर्ष अगस्त में भारत का वस्त्र निर्यात बढ़कर 29,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त में निर्यात में 16.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान वस्त्र निर्यात 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक

0: तक पहुंच गया। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.3% की वृद्धि है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: सेंसेक्स 22 अंक की मामूली गिरावट से 74,315 के स्तर पर रहा, जबकि निफ्टी 53 अंक की मजबूती से 23,271 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली सुधार से 95.94 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला दिल्ली में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18वें ओवर में 4 विकेट पर 201 रन बना लिए हैं। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद पर 108 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। वे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 30 गेंद में शतक पूरा किया। भारत 2 मुकाबले जीतकर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। मौसम विभाग ने कल बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ तूफान आने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi positions India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. 1,00,000 crore rupee investment commitment received under Semicon 2.0 program. India asserts it will take all necessary steps to ensure energy security as US passes bill imposing 100% tariffs on countries procuring Russian crude oil. External Affairs Minister Dr. Jaishankar says India firmly committed to Bhutan's progress. Month-long Seva Sankalp Abhiyan begins across the country, marking Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday and 25 years in public service. And in men's cricket, India and Afghanistan face off in the third and final match of the T20 series in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet the same. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating the 5th edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi.
3: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है। और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एस्पिरेंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
2: Prime Minister Modi highlighted that India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth.
3: जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की थी। इसके बाद के एडिशन में बात आगे बढ़ी। अगले एडिशन में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे। पिछले साल हमने पायलट लाइन्स और टेस्ट चीफ पर चर्चा शुरू की।

0: Countrywide.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए स्वच्छ भारत में जन भागीदारी की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल।
2: नमस्कार। स्वच्छ भारत में जन भागीदारी, राष्ट्रव्यापी देशव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत आज हुई है। इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत। अक्षय जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: आज देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत हुई है, ये कितना बड़ा अभियान मानते हैं, क्योंकि ये 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन इसका समापन होगा। इसके क्या मायने हैं और आम लोगों के लिए ये किस तरीके से आंका जा सकता है?
3: ये अच्छी बात है कि इस साल फिर एक बार स्वच्छता ही सेवा हो रहा है, लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत आज नहीं है। 2014 में लाल किला की प्राचीर के ऊपर से उस टाइम नए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को आह्वान दिया था और उस टाइम लोगों को चौंका दिया था कि हमें देश को स्वच्छ करना चाहिए, हमारे आदत बदलना चाहिए और हमारे जो बहन माँ और जो भी महिलाएं हैं उनकी डिग्निटी और सिक्योरिटी के खातिर, बीमारी से बचने के खातिर देश को स्वच्छ करना अति आवश्यक है और इसके लिए एक जन आंदोलन की जरूरत है। तो 14 से लेके अभी तक 26 तक 12 साल हो गया ये आंदोलन चलता आ रहा है और ये पहले ऐसा कभी नहीं था। और मैं अगर कह सकता हूँ कि हमारे भारत की जो आजादी की लड़ाई है उस टाइम जो आंदोलन था उसके बाद अगर एक सचमुच के एक जन आंदोलन हुआ है तो मैं स्वच्छ भारत का मानूंगा। और प्रधानमंत्री जी का अगुवाई में एक बहुत बड़ा चीज शुरू हुआ जो आज तक निरंतर चल रहा है, उसका नाम स्वच्छता ही सेवा, और वो आज 17 सितंबर को शुरू होता है। पहले 2 पक्ष के लिए हुआ करता था, जैसे कि स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर जो कि गांधी जयंती है उस दिन उसका कंप्लीशन हुआ करता था। अभी इस बार 1 महीना है, लेकिन इसके पीछे जो भावना है वो है कि ये जो स्वच्छता है या देश को स्वच्छ करने का जो मुहिम है ये जनता की है। जैसे गांधी जी ने बोला था कि भाई अपने हाथ में झाड़ू पकड़ोगे तब अपना आंगन और बाहर देश साफ होगा, ऐसे ही एक अंदर में इंसान और सारे सिटीजन सबका अंदर में एक निर्णय है कि हम खुद अपना आंगन, अपना जो बाहर गली सड़क और पब्लिक प्लेसेस सारे जगह स्कूल मोहल्ला सब कुछ साफ करेंगे, हम खुद ही साफ करेंगे सब मिलके ये 1 महीना खास करके आज से लेके। तो ये स्वच्छता ही सेवा अपने जो श्रमदान करेंगे और जगह जगह सफाई करेंगे एक मिसाल करेंगे, इसमें एक जोश आएगा। अपना स्वच्छता जो कार्यक्रम है जैसे कि 12 करोड़ शौचालय बने 2014 से लेकर आज तक, और घर घर से वेस्ट मैनेजमेंट का सारे घरों की कचरा जो है रोज आते हैं गाड़ियां आके घर से कलेक्शन होते हैं, वेस्ट रिकवरी और वेस्ट प्रोसेसिंग का बहुत कैपेसिटी बढ़ा है, बाहर जो कूड़े का शहरों की बाहर जो लैंडफिल बोलते हैं उसका संख्या भी कम हो रहा है, बहुत सारी चीज हो रहा है। लेकिन ये जो बात है स्वच्छता ही सेवा की जो 1 महीना है ये लोगों की कार्यक्रम, इसको दिखाने के लिए लोग खुद आकर बाहर साफ करेंगे वही चल रहा है और 17 से शुरू हुआ था, बहुत सफल रहा है। इसमें करोड़ों लोग हर साल जुड़ते हैं और भी होता है तरह तरह के समय में, कभी 1 हफ्ता कभी 2 दिन कभी कोई एक फंक्शन है सेरेमनी है या कोई ओकेजन है उसमें भी होता है, और से बड़ी और कंसंट्रेटेड फोकस तरीके से अगर कभी होता है। और इसमें स्वच्छ भारत मिशन के जो 2 मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय एक शहरी और आवास जो मंत्रालय है, उनमें से स्वच्छ भारत मिशन के जो रूरल और अर्बन दोनों पक्ष मिलके इसमें थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन लोगों के हाथ में काम है, लोग साफ सफाई करते हैं सब जुड़ते हैं और एक सेवा मनोभाव से करते हैं और एक आंदोलन के तरीके से करते हैं।
2: इसमें जन भागीदारी किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, जागरूकता किस तरह से फैलाई जा सकती है और जागरूकता को सारी जनता आम तौर पे खुद से अपनाए, उसके लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार कितनी सफल हो पाई है इसमें?
3: इसमें सफलता तो आप अगर पहली फेज में माने जैसे कि 14 से 19 पहला फेज था और 19 से 26 जो है इस साल तक दूसरा फेज है स्वच्छ भारत मिशन का, पहला फेज में तो लोगों की भागीदारी बहुत जबरदस्त था। उस टाइम मैं सोचता हूँ कि फेज 2 जो खत्म होने वाला है और फेज 3 जो आने वाला है ये जन भागीदारी को और थोड़ा बढ़ाने की स्कोप है, जो कि पहले था 14 से 19 तक बहुत जबरदस्त था, उस टाइम गांव गांव शहर शहर लहर जैसा चल पड़ा था, उस टाइम लोग करीब करीब प्रण कर लिए थे कि हमारे गांव को या हमारे शहर को खुले शौच से मुक्त

0: फोकस था उसमें, खुले सोच से मुक्त, जो ओपन डेफिकेशन फ्री बोलते हैं, और बहुत सारे श्रोताओं को शायद ध्यान नहीं होगा 2014 में भारत में खुले में सोच करने वाले लोगों की संख्या जो है 60 करोड़ 600 मिलियन था, और वो दुनिया के सारे खुले सोच करने का 60% था। लगता था कि भारत में ये जो काम है ये कभी बन नहीं पाएगा, और टोटल एक्सेस और यूसेज जो टॉयलेट की था, शौचालय की, मान लीजिए 1947 जब से भारत आजाद हुआ तब से लेके 2014 तक करीब 38% था, लेकिन 2014 से लेके 19 के अंदर देश खुले में सोच मुक्त हुआ। इसको मेंटेन करने का और आगे बढ़ाने का बहुत जरूरत है, और इसमें 4 P बोला जाता है, 4 P। पहला पी है पॉलिटिकल लीडरशिप, जो प्रधानमंत्री ने दिया और सारे लोगों को, जितने बड़े बड़े लीडर सबको इन्वॉल्व किया, सारे मुख्यमंत्री, सारे कैबिनेट मंत्री, सारे गवर्नर, सारे MP, MLA और जितने बड़े बड़े सितारे हैं सब इन्वॉल्व होंगे। दूसरा है पब्लिक फाइनेंस, सरकार ने काफी पैसा लगाए हैं सैनिटेशन के ऊपर, सफाई के ऊपर कभी इतिहास में इतना पैसा नहीं लगाया गया था, बहुत पैसा लगाया गया। तीसरा पी है पार्टनरशिप, सबको जुड़ा, ये सफाई जो है सबके काम हो गया, किसी एक का कोई मंत्रालय का काम नहीं है, सरकार की काम नहीं है, उसमें कॉर्पोरेट भी जुड़े, सिविल सोसाइटी भी जुड़े, मीडिया भी काफी जोर शोर से जुड़ा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का उसमें दोनों का तालमेल रहा, लोकल गवर्नमेंट जैसे डिस्ट्रिक्ट और पंचायत और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जुड़े, सबका पार्टनरशिप से काम हुआ। लेकिन जो आखिरी पी जिसका की जिक्र आपने अभी किया, वो है पीपुल्स पार्टिसिपेशन या लोगों की भागीदारी। जैसे अभी जो स्वच्छता सेवा हो रहा है उसमें यूनिट्स आइडेंटिफाई किया गया है, जो सबसे चैलेंजिंग शहर में खास करके ज्यादातर जो जो जगह एकदम जिद्दी की तरह से वहां गंदगी है उसको सब मिलकर साफ करेंगे, साफ नहीं तो माफ नहीं। बात है निपटान वेस्ट का, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट का निपटान की बात हो रहा है, और ये शहरी इलाका में ज्यादा चैलेंजिंग है, गाँव में इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन और जैसे गार्बेज फ्री सिटी का एक रखा गया है टारगेट, 4800 करीब हमारा शहर और नगर है, तो वो गार्बेज फ्री कब होंगे और थोड़ी समय लग जाएगा, लेकिन काम निरंतर प्रयास है, क्योंकि जैसे गांव के लोग जितना जुड़ गए थे शहर के लोग शायद इतना भी जुड़ नहीं पाए हैं। और वेस्ट जो डिस्पोजल है या वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट प्रोक्योरमेंट, वेस्ट रिकवरी हुआ, वेस्ट को कन्वर्ट करना हुआ, निपटान करना हुआ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम है, और इसमें टेक्नोलॉजी भी आते हैं और कुछ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज भी आते हैं। और मुझे इसे लग रहा है कि जिस तरह का लोगों की इसमें जुड़ाव था 2014 से 19 फेज वन में, ये जुड़ाव का और एक बार थोड़ा सा इसका रिवाइवल होने का बहुत आवश्यक है। ओपन डेफिकेशन फ्री तो एक बार हो गया, खुले सोच से मुक्त अभी, लेकिन उसके आगे पैरामीटर्स जोड़ जाता है कि क्या गांव में कचड़े का निपटान हुआ है, क्या गंदे पानी के स्रोत बंद किया गया है, क्या उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर वेस्ट का एक बार सेग्रीगेशन हो जाए तो फिर वो गोल्ड बन जाता है, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग और उसका वैल्यू उससे जो निकलना है बढ़िया से निकलता है, तो उसे वेस्ट टू वेल्थ निकलता है उसमें, क्योंकि वेस्ट जो है रिसोर्स है। ये सरकार ने खाली कहा नहीं है, ये तो अभी इंडस्ट्री और एंटरप्राइज धीरे धीरे आ रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, क्योंकि इसमें इतना भरा हुआ है जिसको कचरा से कंचन बोला जा रहा है तो इसमें है। लेकिन उसके लिए पहली कंडीशन है, चाहे इंडिविजुअल घर का हो या कोई बल्क जनरेटर्स हैं, चाहे जिसे रेसिडेंशियल सोसाइटीज हो, मॉल्स हो, कॉलेज हो, फैक्ट्री हो, रेस्टोरेंट हो, वहां से कचड़े जब निकलेंगे ना तो वो सेग्रीगेट होकर निकलना है, नहीं तो सेग्रीगेट होकर नहीं निकलता है तो फिर वो बीमारी और गंदगी और दुनिया भर का लैंडफिल, ये सब का आशंकाएं बढ़ता है और यही सब होता है।
1: आपने बताया कि आम जनता को जिस तरह से इसमें भागीदारी करने की जरूरत है, तो कार्यालय स्तर पर नहीं, ऑफिस स्तर पर भी बहुत सारे हैं आजकल, चूंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे की भी बात हमें करनी चाहिए, वो भी एक बड़ी समस्या है। तो ई कचरा प्रबंधन, बहुत सारे जो कार्यालय हैं केंद्र सरकार के, राज्य सरकारों के जो कार्यालय हैं उसमें भी, जैसे कि सरकार ने कागज पे काम करने की बजाय वो जो ई प्रबंधन किया है या ई फाइलिंग का और ई ऑफिस का भी जो किया है, इससे कितना आसानी हुई है ये सारे कचरा निपटाने में?
0: बिल्कुल, आप देखिए ना, इलेक्शन में भी कुछ दिन काम किया था, और इलेक्शन में जब बैलेट को निकालकर ईवीएम लगाया तो कितना कागज की बचत हुआ, और कागज बचत होने का मतलब इतना खाली कागज की बचत नहीं होता है, उसमें एनवायरमेंट, ट्री, गच कटने का और कचरा, ये सबसे रिहायत मिलता है। तो ऐसे ही सरकार का एक प्रोग्राम चला हुआ है मिनिस्ट्री से मिनिस्ट्री लेके, कैसे ई ऑफिस होगा, कैसे कागज की यूज कम होगा, कैसे पुराना चीज निकाल के उसको डिस्पोजल होगा। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोला, क्योंकि आजकल तो हम लोगों का ऐसे हो गया ना, जैसे मोबाइल फोन बोलिए या लैपटॉप बोलिए या आईपैड बोलिए या टीवी बोलिए, जितना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है इसको इतना चेंजेस आता रहता है, अपग्रेड होता रहता है, नया नया वर्जन आता है, और लोगों का खरीदने का कैपेसिटी इतना बढ़ा है, लोग चेंज करते रहते हैं। जो पुरानी चीज है उसको अगर ठीक तरह से उसको डिस्पोजल नहीं किया गया ठीक जगह में जाके, उसको एक चैनल है जिस तरह से आइडेंटिफाई होकर जगह, ये खाली कचड़े में डाल देने से नहीं होगा, इसको

0: काल के, इसका एक साइंटिफिक तरीका है डिस्पोजल के लिए, नहीं तो पूरा टॉक्सिक हो सकता है, बहुत सारी चीज डेंजरस क्रिएट हो सकते हैं इसमें। और एक बात है, मेडिकल से जो वेस्ट होता है उसका भी एक पर्टिकुलर तरीके होते हैं डिस्पोजल होने का। एक बड़ा कंसेप्ट जो दुनिया में आया है और सरकार ने उसको बढ़ावा दिया है, नीति आयोग भी बढ़ावा देता है, ये आर आर आर, ये वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छता के साथ बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इसमें है रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल, थ्री आर, मतलब आप चीजों की, जैसे पहले जैसे गांधी जी कहा करते थे कि अपना जरूरत के हिसाब से चीजें इस्तेमाल करो, ऐसे नहीं कि स्प्लॉरिज कर रहे हैं आप, है ना। तो वो बोलते हैं कि रिड्यूस, आप जो सामान यूज करते हैं रिड्यूस, लेकिन आज को मेरे को लगता है गांधीवादी बातों को सुनने के लिए शायद, और रिड्यूस करने के लिए कंजम्पशन को, ये कंज्यूमर दुनिया में रिड्यूस करने का मैं तो ज्यादा आशावादी नहीं हूँ, क्योंकि देख नहीं रहा है। रीयूज रिसाइकल जरूर हो सकता है, आप कोई चीज को रीयूज करिए कोई तरीके से करके, उसका मिसाल बहुत है जो जिसमें जैसे कि प्रधानमंत्री जी मन की बात में भी वो जिक्र करते हैं ये रीयूज रिसाइकल का, हर चीज रिसाइकल हो सकता है, हर चीज का रीयूज हो सकता है। तो हम हर चीज पर थोड़ा सा, जैसे मटेरियल सराउंडिंग हमारा है, कंज्यूमेबल आइटम्स है, चाहे हमारे घर में हो, दफ्तर में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस जहां भी हो, हम थोड़ा सा उसको यूज करने के टाइम थोड़ा सोचें। आपने शायद सुना होगा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, प्रधानमंत्री जी ने एक दुनिया को कॉन्सेप्ट दिया है भारत के अगुवाई में, LIFE, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। उसमें लगा है कि जितना आप जुडिशियस कंजम्पशन के ऊपर बात किया गया
1: जी,
0: आप जो कंज्यूम करें तो उसका स्वच्छता के साथ लिंक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आज के तारीख में, क्योंकि ये सब दुनिया भर का चीज इस्तेमाल करके बाएं दाएं फेंकते रहिए या और भी खरीदते रहिए, तो फिर तो कचरा जाएगा कहाँ, कचरा तो रहेगा ना वहाँ, फिर उसको निपटान करने के लिए आपको प्रबंधन करना पड़ेगा, उसमें भी खर्च होता है, उसमें भी मैनेजमेंट होता है। रिड्यूस रीयूज रिसाइकल जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे लग रहा है कि एक दुनिया को सस्टेन करने के लिए, ये अपना एनवायरमेंट के लिए भी बहुत काम देता है।
1: अच्छा, जैसे इस बार 1 अक्टूबर को 1 घंटा, 1 दिन, 1 साथ देश भर में स्वैच्छिक श्रमदान की बात है। हमारे यहाँ ना बहुत अच्छे अच्छे सार्वजनिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, समुद्र तट हैं, मंदिर परिसर हैं, और अभी तो बहुत सारे जो इस तरीके से जो धार्मिक स्थल भी बने हैं वहाँ पे स्वैच्छिक श्रमदान करने की बात करी, और आजकल का युवा भी जो है इसके बारे में काफी जागरूक हुआ है। आप देखिएगा, अगर कहीं बार हम समुद्र तट पर जाते हैं या किसी सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पे कूड़ा फैलाने के प्रति जो प्रवृत्ति है वो कम हुई है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे?
0: बिल्कुल, ये तो एकदम मिसाल सेटिंग के बारे में बात हुआ कि एक मिसाल बनेगा, उसमें रिकॉर्ड्स भी बनते हैं, कई बार रिकॉर्ड्स बने हैं, इस बार होपफुली और भी बड़ा रिकॉर्ड बनेंगे। लेकिन एक स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस प्रोग्राम शुरू हुआ था देश में, जितना बड़े बड़े जगह है जैसे तीर्थ और या भ्रमण की जगह जो है टूरिज्म सेंटर, उसी जगह में क्योंकि फुटफॉल, आपने जैसे अभी कहा फुटफॉल बहुत ज्यादा रहता है और उसमें फिर कचरा की संभावना होता है, गंदगी का संभावना होता है। लेकिन आजकल लोगों को जागरूकता इतना आया है और लोगों की तरफ से, जैसे सरकार या एजेंसीज की तरफ से इतना कोशिश होता है, पहले सैनिटेशन को सामने रखा जाता है। अब कुंभ का देखिए ना, उसके पहले तो स्वच्छ कुंभ इसको बुलाया गया था, उस टाइम कुछ भी करने के पहले सफाई का, जैसे शौचालय का, ड्रेनेज का, सीवेज का, सॉलिड एंड लिक्विड जो वेस्ट जनरेट होगा, जैसे करोड़ों लोग आएंगे, करोड़ों लोगों का जो चीजें यहाँ से निकलेगा वहां से निकलेगा उसका कैसे बंदोबस्त है, वो पहले किया जाता है। आजकल छोटे छोटे मंदिरों में भी देखेंगे जो फूल जैसे चढ़ाया गया, प्रसाद चढ़ाया गया, उसके बाद उसको रिसाइकल किया जाता है, फूलों को निकाल के ड्राई फ्लावर्स या उसमें अगरबत्ती या और तरफ से जो कॉटेज इंडस्ट्री बनाया जाता है।
1: आज भी जो विभिन्न कार्यालय है, आज स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई है, आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग में भी यहाँ पे भी स्वच्छता, सभी कर्मचारियों की स्वच्छता की शपथ दिलाई गई है। ऐसा माना जा सकता है कि अब काफी लोग जागरूक होंगे इसके बारे में।
0: एक प्रण है, जैसे ये स्वच्छता एक दिन की बात नहीं है और स्वच्छता कोई जन्मगत आदत नहीं है, इस आदत को क्रिएट किया जाता है, ये एजुकेशन है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और आज की तारीख में खत्म नहीं हो पाएगा, हमें इसको सस्टेन करना पड़ेगा, हमें उसको साथ साथ लेके अपने से अपने बच्चों का और आगे आगे इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो कचरे को निकालने का प्रक्रिया भी रोज होना चाहिए, सफाई को सिखाया जाता है, अगर सिखाया जाता है तो बच्चों को घर में सबको अपने अपने सफाई का आदत समाज में सिखाया जाएगा,
1: घर से समाज तक, समाज से जन भागीदारी, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। चलिए अक्षय जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ भारत में जन भागीदारी की भूमिका पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड

0: मेरे माँ बाप, मेरे अपने माँ बाप, मुझे अपना बेटा नहीं एक एक जहरीला सांप समझते हैं। तुम भी मुझसे डरो, क्योंकि मैं एक जहरीला सांप हूं। मैं तुम्हें भी डस सकता हूं, जहरीला सांप।
1: विजय, विजय, सीताराम, विजय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमीकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही। श्री वैष्णव ने कहा कि एक कंपनी ने आज भारत में 5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है और अन्य कई कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। सरकार ने कहा कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्यों के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमरीका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूर्ण हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुंग छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छेरिंग तोबके को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सेवा दिवस में देशभर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। दिल्ली और बिहार सहित देशभर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रूपये जमा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।